ऐसी कुछ गाने गाए हुए पद्म श्री हंसराज हंस की आवाज विच। समय इस वेले 8:57 हो गए ने। तो सुन रहे अपना मनपसंद पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वाद 99.9 FM तो शाम कुमार दे नाल। हफ्ताबारी प्रोग्राम हर एतवार सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक स्वाद 99.9 FM की फ्रीकुएंसी तो सिडनी तो पेश किया जाता। तो सिडनी टाइम 8 बजे तो लैके 10 बजे तक दुनिया के किसी कोने च बैठ के सुनते हैं तो सिडनी टाइम के हिसाब न मिला के www.swr999.com.au ते सुन सकते हो। चलो 2 मिनट की प्रोमो सुनते हैं, उस तो बाद फिर प्रोग्राम लैके हाजिर।

0: गोलगप्पे खाते रहोगे, गोलगप्पे गोलगप्पे खाओगे, पर तुहाडा बैटर हैगा तुसी गोलगप्पे वेचोगे। हुण मैं तुहानू लेके जा रही हूँ फ्यूचर दे विच, रेडी? ओके, मेरे नाल बोलो गिली गिली गिली
1: गिली गिली
0: मामा।
2: वेलकम वेलकम टू योर फ्यूचर।
0: हेलो जी, तुहाडी चार्ज दुकान।

0: आ जाओ भाई वापस ले जाओ।
1: वापिस जाना
0: है
2: सच्ची। बहुत है। लगे था
0: नहीं अच्छा लगा
1: नहीं।
2: रेडी फॉर प्रेजेंट गिले गिले गिले
3: गिले गिले गिले
2: मामा
3: मामा
2: वेलकम इन योर प्रेजेंट। चलो एनीवे नाउ आई एम गोइंग। थैंक यू सो मच। बाय सी यू
1: बाय।

0: 99.9
1: क्यों खेड़दा है तू खेड़ नसीबां दे। सो चलो अगे गुरनाम भुल्लर तो सुनते हैं इदां दे हालात च ओदी की आवाज़।

0: Swan 99.9.
1: समय इस वेले 9:53 हो गए ने। ये नाल ही अज का प्रोग्राम खत्म होने का समा भी आ गया। तुहाडा 2 घंटे साथ देण का बहुत धन्यवाद। आउंदे ऐतवार फिर इस वेले 8 बजे तो लैके 10 बजे तक तुहाडा मुलाकात होएगी। तद तक रब राखा। यही आस करते हैं कि अज का रहिंदा होया दिन पूरा हफ्ता सारे की जिंदगी च खुशियां वाला होवे, तंदुरुस्ती वाला होवे। जिथे भी रहो खुश रहो, खुशहाल रहो, अपने सपने जिउंदे रखो। सपने जिउंदे रखांगे तां जीण दा इक सहारा मिलेगा। सो आउंदे ऐतवार फिर तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। गीत सुनदे हां, बहुत ही प्यारा गीत, ते इहदे नाल ही इस प्रोग्राम की समाप्ति। फिर मिलांगे।